0: हैप्पी हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? रेडियो गेजे का साथ है और आई होप आप लोग का जो वीक है ये अच्छी तरह से गया होगा। बस हमारा वीक या हमारा जो वीक है ने अभी ही शुरू हो रहा है और हमारे साथ आरजे जी भी है। फिलहाल के लिए हम आज स्टूडियोज़ में एक अलग सेटअप लेकर आए हैं, तो अगर आप हमें फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे हैं बहुत ही जल्द हमारे साथ आप आ जाइए हमारे फेसबुक लाइव पे, क्योंकि ये भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। चलो आरजे जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है क्रिश जी, मज़े में। ये वीक तो पता नहीं कैसे निकल गया आज। वैसे आपके आरजे जी और आरजे क्रिश दोनों सरदर्द के साथ, सरदर्द लेकर नहीं, सरदर्द के साथ आज स्टूडियो में।
0: सरदर्द तो आप हो ना?
1: सरदर्द तो हम हैं, हम तो या पैदाइशी सरदर्द है वैसे। सो आप सबका रेडियो केजे लोकल पर गुजरात की मिठास और केरला के तीखे अंदाज के साथ आपकी प्यारी, आपकी दुलारी, सीधी सादी भोली भाली आरजे जीबी एंड फीजी से खट्टे चटक मटक आरजे क्रश आपका रेडियो केजे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे जीबी जी ने कहा कि जीबी जी सबका स्वागत करना चाहते हैं और इनके साथ हम भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। वैसे आज हम अगर प्रोग्राम की ओर देखें तो जी हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं क्राइस्टचर्च में क्या हो रहा है। और वैसे जीबी जी भी दो तीन दिन पहले क्राइस्टचर्च में एक बहुत ही सुहाना, बहुत ही खूबसूरत सुबह था, आपने देखा था वो?
1: जी,
0: ब्यूटीफुल मॉर्निंग सनराइज।
1: जी वैसे हमें सनराइज कम देखने को मिलता है, लाइक आई थिंक हम तब तक काम पे पहुंच गए थे जब
0: तो की तब तक आप सोए रहते।
1: हाँ हम सोए भी रहते, वो भी नहीं, पूरा सनराइज होने के पहले हम जाकर ऑफिस में पहुंच भी चुके थे, उसके बाद जो है वो पूरा सनराइज हुआ था। बट हाँ विंटर का सीजन आ रहा है, मतलब ब्यूटीफुल सनराइजेस अब हमें देखने को मिलने वाला है, स्पेशली क्राइस्टचर्च वालों, आई थिंक साउथ आइलैंड में ये बहुत ही सुंदर लगता है। एंड आई थिंक उस दिन सबके स्टोरीज में और सबके फेसबुक में और सबके इंस्टाग्राम में वही पोस्ट था विच इज द गोल्डन आवर का जो टाइम।
0: तो कुछ अलग ही था उस दिन का वो जो सुबह था। तो जिन जिन लोगों ने देखा है आपने काफी उसे एंजॉय किया होगा, और जिन जिन लोगों ने शायद किसी कारण मिस कर दिया होगा तो शायद यू नो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि आने वाले दिनों में भी ऐसा जो मॉर्निंग है ये है। और जब भी आज यानी कल से एक क्विक मूवी, बहुत ही खूबसूरत मूवी चल रहा है जो लोग जाकर देख रहे हैं।
1: मलयालम मूवी के बारे में बोल रहे हो? जी हाँ, दृश्यम 3 रिलीज हुआ है, जो आई थिंक हम सब दृश्यम 3 के लिए वेट कर रहे होंगे, नॉट ओनली मलयाली, इसके एंड ऑफ द डे दे रिवील के एक्चुअल में सीक्रेट एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो कि वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं,
0: काफी टेंस होता है ना,
1: काफी टेंस्ड होता है। सो आई एम श्योर के वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड वॉच दृश्यम 3 विच वी विल मेक यूज ऑफ इट, बट आप लोगों ने अगर दृश्यम 3 नहीं देखा है तो वील डेफिनेटली से दैट गो एंड वॉच इट।
0: ओके चलो गीत में हम चलते हैं, जब हम वापस आएंगे तो तब तक हम शायद होपफुली इंशाल्लाह अपने जो फेसबुक लाइव यहाँ पर भी रहेंगे। तब तक के लिए सॉन्ग एंजॉय कीजिए द रिसेंट मूवी धुरंधर द रिवेंज से। यू आर लिस्टिंग टू रेडियो केजे लोकल ओनली ऑन
1: प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: Welcome back to Radio KJ Local. You're listening to us on Plains Media 96.9. अब हम Facebook Live पर भी आ गए, तो आप हमारे साथ अगर आप घर पर हो तो Facebook Live से भी जुड़ सकते हो.
1: जी हाँ, जीबी जी आज बहुत टायर्ड है, क्योंकि जीबी जी हम लोगों की तरह जीबी जी का माइंड नहीं चलता है. हमारा माइंड एक टाइम आता है जब दिन में बंद हो जाता है. इट गोज इन टू ईदर यू नो ऑटो पायलट मोड या यू नो उसमें रिलैक्स मोड, पर इनका नहीं बंद होता है. तो बाय द टाइम 6:15 होता है शी इज़ वेरी टायर्ड, बट आई एम वेरी सरप्राइज कि शी इज सिटिंग इन द स्टूडियो विद अस. मुस्कान जी, जी हाँ, क्या हो रहा है? हाउ इज़ एवरीवन एट होम? अमित जी, स्टार जी, आपकी प्यारी गुड़िया रानी और इसके साथ साथ विवान, सभी को हमारे तरफ से हैप्पी फ्राइडे के दिन. अच्छा जी, चले, हमने अभी हाँ क्या आपको बोलने
0: जिस तरह कृषि

0: कहा कि लाइक हमारा दिमाग कभी भी शट डाउन नहीं होता है और चलता रहता है. बट आई विल टेल यू गाइस समथिंग, कृषि, हम अगर घर पे, अगर हमारे कोई भी शाम को इवेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कितने बजे सो जाते हैं? सच बता दो.
1: 7.
0: और कल अराउंड 5:45.
1: She sleeps quite early and I think, yeah.
0: हम काफी जल्दी सो जाते हैं, like literally, हम सब जानते हैं, like काफी लोग हमसे पूछते हैं, यार जीबी तुम ऐसे कर कैसे लेते हो, like इतने active रहते हो, इतनी सारी चीजें करते हो, कर कैसे लेते हो? But the fact is that end of the day, जब हम घर आते हैं, हम 5:30 हो या 5:45 हो, हम बेड पे लेटते हैं और हम literally सो जाते हैं. And I think I wake up only when Krish ji calls me के खाना खा लो. That's when, और कभी कभी तो ऐसा होता है, आई नो कि काफ़ी लोगों के घर पे ये रूल है कि बेडरूम में नहीं खाना चाहिए, हमारे घर पे भी ये रूल है, बट काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि हम इतने, आई डोंट थिंक इट्स अ फिजिकल एग्जॉशन बट इट्स मोर ऑफ अ मेंटल एग्जॉशन, कि इतनी सारी चीज़ें, जैसे आप जानते हो, इतनी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चल रहा है, जैसे कैसे क्रिश जी,
1: रामायण वो कहते हैं ना, उसमें विद्या बालन उसमें कहती है ना, एंटरटेनमेंट, इसी तरह से अभी हमारे सोते जागते हर जगह रामायण. मनमोहन सिंह जी, वी आर गुड, आप कैसे हैं? मुस्कान जी, हमने आपको जरूर याद किया. सोनी शर्मा आ गए, आप कुछ बोलना चाहेंगे सोनी जी?
0: नहीं, सोनी दी क्या बोल रही थी, हम जैसे
1: क्या
0: देखने को, अप्सराओं को देखने के लिए. सोनी अप्सरा जी कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करना चाहते. दूसरी अप्सरा मुस्कान भी हमारे साथ जुड़ गए रामायण की. तो हाँ, हमारा जो दिमाग,
1: अपना नाम नहीं लिया,
0: नहीं हम तो है ही नहीं.
1: आप तो, आप ही तो रास्ते में आकर बोल रहे थे कि है कोई इतना खूबसूरत.
0: ओह माय गॉड,
1: आप ही तो बोल रहे हैं कि उनका टच एंड ग्लो का, देखो
0: अच्छा, टच एंड ग्लो का तो एड के लिए नहीं, टच एंड ग्लो ने जो हमारे साथ किया है उसको खूबसूरती ही कहते हैं. वैसे हरजिंदर सिंह जी कह रहे हैं, हेलो गाइस, आई होप यू रिमेंबर वी मेट एट डी सॉल्टेड रेस्टोरेंट लास्ट फ्राइडे, हैड अ गुड टाइम विद यू गाइस. यस यस यस
1: पाजी, सत श्री अकाल, की हाल
0: कैसे हैं आप हरजिंदर जी?
1: ब्यूटीफुल कपल,
0: ब्यूटीफुल कपल, आपकी वाइफ को भी याद किया कहना है, एंड रामायण के टिकट जरूर बुक करना. उस दिन हमारी बात हो रही थी इसके बारे में, सो डू बुक द टिकट्स फॉर रामायण एज वेल. तो बात कहां पर, आप कुछ पूछ रहे थे हमसे.
1: जी हाँ, नीलेशनी देवी जी, आप भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं फीजी सुबह से, कैसे हैं? सभी को राम राम, मम्मी को खासतौर पर से राम राम. मुनेश भाटिया जी, आप भी हमारे साथ शामिल हो गए. मुनेश जी, आपसे भी ये सवाल है, जीबी जी आपसे भी सवाल है. हमने तो शहर में रहकर ये जो कल का सुबह का नजारा देखा था मुनीश जी के सामने, कैन यू इमेजिन मुनीश जी, आपके, आपका क्या क्या था कल सुबह का नजारा, इफ यू वोक अप.
0: इमेजिन मुनीश जी, आप कितने बजे सुबह को उठते हो वैसे, और आपके घर से कल सुबह का जो नजारा था वो कैसा था? क्योंकि यार
1: पूछो ना, कितने लोगों ने देखा था कल.
0: अच्छा ये बता दीजिए कि कल सुबह का हु गॉट टू विटनेस दी, इज इट ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन आवर इन द मॉर्निंग? Who got to witness the golden hour yesterday? Like सुबह के अराउंड 6:30 से 7:30 के बीच में जितने भी लोग जागे थे, क्या आपने कल का नजारा देखा क्राइस्टचर्च का? इतना सुंदर था कि नजर हटाने का मन नहीं हुआ. हम ज्यादा नहीं देख पाए क्योंकि तब तक हम काम पे पहुंच गए थे. उसके
1: हमने तो वीडियो भी डाला, बहुत लोगों ने उस पर रिएक्ट किया
0: जी.
1: सोनी ने, मुस्कान ने, सभी ने, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया. आई थिंक उसमें जो गाना भी, हमने
0: वीडियो पे बहुत रिएक्शन आते हैं ना, जो स्टोरी पे डाल
1: कि हम है ही ऐसे ना.
0: कैसे हैं आप जरा बताइए.
1: हम ऐसे हैं कि अभी जीबी जी से मिलने, जीबी जी के मिलने के बाद हम हर दिन हमेशा प्यार मोहब्बत फैमिली बच्चों की गीत बचाते हैं
0: जी.
1: जीबी जी से मिलने से पहले हम कैसे गीत सुनना सुनते थे, जितने लोग 96.9 पे सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक लाइव पे सुन रहे हैं, आप सभी को हम सुनाना चाहेंगे. यू आर लिस्टिंग टू रेडियो केजीएल लोकल ओनली ऑन
0: प्लेन्स मीडिया 96.9.

0: दूसरे को शेयर कर रहे थे।
1: ओ हमदम जी, बिल्कुल ये अच्छे अच्छे गीत आज हम लेकर आ रहे हैं। I hope you guys enjoy. By the way, हमारे जो स्टूडियोज है ये बिल्कुल 1NZ स्टेडियम के सामने हैं। हम देख रहे हैं काफी ज्यादा तादाद में लोग जा रहे हैं आज क्रुसेडर्स और चीफ्स इनका जो मैच देखने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव से भी जुड़े हैं, कुछ लोग फ्रिक्वेंसी पे भी सुन रहे हैं। इसके साथ साथ जीबी जी, आज आपका भाई का जोबी जी का हैप्पी बर्थडे भी है।
0: हाँ, और आज श्रुति का भी हैप्पी बर्थडे है।
1: जी हाँ, किसी और का अगर हैप्पी बर्थडे है तो डू टच एंड ग्लो बोथ।
0: टच एंड ग्लो बोथ।
1: जी हाँ, तो हमारे जो करीबी लोग हैं, करीबी दोस्त हैं, एक तो हमारे जीबी जी के भाई जी हैं जो भी भैया, आज आपका हैप्पी बर्थडे है, तो हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ श्रुति जी, श्रुति वेनकर जी, इनका भी आज हैप्पी बर्थडे, जो अभी फिलहाल के लिए टोक्यो जापान में घूम रही है
0: जी,
1: तो इनको भी हमारी तरफ से वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: एंड उनके पतिदेव का भी बर्थडे था कुछ दिन पहले। हाँ, दो दिन पहले।
1: ये तो अच्छा होता है ना जब एक दो दिन आगे पीछे बर्थडे होता है ना,
0: इसलिए तो वो लोग ऐसे ट्रिप पे चले जाते हैं बर्थडे वीक में, विच इज रियली नाइट। पाजी यार, वाइफ ने पढ़ लिया।
1: पाजी हम कह रहे थे पंगा मत लो,
0: अब प्लीज कोई अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दो, मनाना भी है।
1: ओके, बिल्कुल ये भाई,
0: आप सॉन्ग की बात करो और हम आप लोगों के लिए ना प्ले करें, तो एक काम करो, अपनी बीवी को, अपनी जोरू को अपने साथ बिठा दो अभी, एंड एक प्यारा सा सॉन्ग अपनी वाइफ के लिए।
1: आपके क्या आपने कहा, आपकी बीवी को, आपकी जोरू को, क्या
0: आपके लिए नहीं है वो,
1: पूरी दुनिया मुझे कहते हैं मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा
0: शाम
1: से। आई थिंक जोरू के गुलाम बनने में कोई शेम नहीं होना चाहिए, यू नो क्यों?
0: लंगा लांगा लांगा,
1: यू नो लांगा लांगा
0: घूंघट का।
1: अच्छा क्यों क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जोरू के गुलाम बनने में कोई वो शर्म नहीं होना चाहिए
0: जी?
1: क्या है,
0: क्यों नहीं होना चाहिए
1: कि आप मुझे बताओ कि आप जिंदगी कैसे आसान आपके लिए होगा, आप पूरी जिंदगी शर्म से जिएंगे या पूरी जिंदगी डर से जिएंगे, क्या ज्यादा है?
0: दोनों नहीं, ना ही हम शर्म से जीना चाहते हैं ना ही डर से।
1: शर्म तो फिर भी मैनेज कर लोगे, भी डर आप कैसे मैनेज करोगे?
0: सच बात है, लाइक कभी कभी जिंदगी में किसी किसी से डर के जीना पड़ता
1: है। इसीलिए अगर आप जोरू के गुलाम हैं तो शर्म चलेगा, डर नहीं चलेगा। लीजिए जितने लोग, अगर आपसे भी आपके यहाँ पर कोई नाराज है, फिर चाहे वो आपकी अपनी अर्धांगनी हो या चाहे फिर आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप सभी के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड। ये प्यारा सा नगमा आप सुन रहे हैं रेडियो के जे लोकल, ओनली ऑन
0: प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: जी हाँ, ये जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे थे, आहट बैकग्राउंड, नो कॉपीराइट, और ये डराना म्यूजिक के दौरान हम कुछ स्टोरीज बता देते हैं। वैसे जीबी जी, आज ऑलमोस्ट टाइम टू गो, और आज का शो जो हमें था, आप काफी टायर्ड होकर आई थी, एंड आपने सोचा था कि आज शायद
1: देयर्स अ क्वेश्चन, हम जैसे कह रहे थे कि हॉरर स्टोरी बता रहे थे, केजेस हाउस ऑफ हॉरर, एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड ऑन द कॉल, व्हाई डिड शी गेट मैड,
0: दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाट दे कुड नॉट फाइंड आउट, क्योंकि रिमेंबर कॉल सेंटर, द कॉल ओनली लास्ट फॉर 3 मिनट्स, बट दिस कॉल इट डिड लास्ट फॉर 3 मिनट्स, बट शी केप्ट टॉकिंग टू समबडी, द कॉल विच केम थ्रू वाज जस्ट अ नॉर्मल कॉल, नोबडी नोज हुम शी वाज टॉकिंग टू, व्हाट मेड हर सो एंग्री एंड

0: Like, you know, just imagine you have seen Jibby, right? He's always very calm, very quiet. Just imagine all of a sudden Jibby starts shouting, getting angry. Jibby, can you kind of demonstrate it on our phone just because we've got 2 minutes? So from very, watch this. So Jibby, from very calm, you talk very calm. Hello, this is Saffron Call Center, Saffron BPO.
1: This is Saffron Beef PO. How can I help you?
0: And now, as I tell you, act it out. Pehle apne face pe tense lekar aana. And then all of a sudden, your friend don't want to act. So all of a sudden, acting. She started getting angry. So, Saiti, if you get a chance, go. There is a full-on documentary about this where there's more in-depth what happened. And after that, they had to close that whole building. That building to date is closed in Gurgaon. And if you are in Delhi or if you go to Delhi, I think it's become like this iconic, most haunted building in Delhi. So people do go see it. So, yes, with Radio KJ, every Fridays, ko hum aapke साथ ऐसे कुछ कहानी लेकर आते रहेंगे. अच्छा लगा आप सभी का साथ. हम यहाँ से निकलकर बस हमें अभी भी और काम है. कल और संडे को शायद हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे. पर जाने से पहले जीबी जी चले एक बार लोगों को हमारी तरफ से इनवाइट कर दे. याद रखिए इंडियन सोशल कल्चरल क्लब का कल ये अंताक्षरी नाइट ये है, बिल्कुल फ्री है. ये हो रहा है एल्डर्स गेट से. एंड जीबी 2 मिनट है, कुछ थोड़ा सा झलक आप बता दे कि कल क्या देखने को मिलेगा लोगों को.
1: कल हो रहा है गोल्डन एरा अंताक्षरी जो इंडियन सोशल कल्चरल क्लब की तरफ से है. एंड इट्स गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग क्योंकि 6 टीम्स हैव साइंड अप. हर टीम में 3 मेंबर्स हैं. कंपटीशन में काफी सारे सेगमेंट्स हैं जो हम अभी रिवील नहीं करेंगे. बट वी आर एज ISCC टीम आर सुपर सुपर सुपर एक्साइटेड टू कम. एंड ये कंपटीशन का होपफुली हाथापाई ना हो जाए या मारपीट ना हो जाए.
0: आपको पता है हम क्राउड कंट्रोल में कितने स्मार्ट है ना.
1: जी जी, बट ऑडियंस के लिए भी ओपन है. सो डू कम एंड वॉच द अंताक्षरी. ऐसा कभी पहले क्राइस्टचर्च में या साउथ आइलैंड में नहीं हुआ है. सो डू कम एंड सपोर्ट दैट. ये हो रहा है एल्डर्स गेट से. सो कम एंड वॉच देम परफॉर्म. एंड ऑल्सो फूड इज फॉर सेल फ्रॉम MBA फ्यूजन स्नैक्स अराउंड 7 PM. सो डू कम फॉर दैट एज वेल. या
0: यस, बिल्कुल फ्री है ये इवेंट. फूड नहीं, फूड तो ऑन सेल रहेगा बट इवेंट फ्री है. मंगत हैरी जी सेइंग थैंक यू सो मच. हमने देखा कि जब से हमने प्रोग्राम शुरुआत किया आप तब से हमारे साथ है. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीवन हु वाज वाचिंग अस टुडे. गाइस अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे आपको संडे को. तब तक के लिए दिस इज योर आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ विद द वेरी ब्यूटीफुल वेरी गॉर्जियस
1: आरजे जीपी. बाय.
2: मेरी जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना.
0: Till we meet again, look after yourself.
2: That's it for this week. This is your host RJ Krish and RJ Jibby.
0: Keep listening to Radio KJ Local only on Plains FM 96.9. And for more, follow us on Facebook, Radio KJ Local.
2: Also, like and subscribe us on Apple Podcasts to never miss an episode. And find past episodes on plains.org.nz.